0: तुम्हाला माहित आहे का, केंद्र सरकारने लहान उद्योजकांसाठी 40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे तारण मुक्त मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. ही रक्कम कुवेत सारख्या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 3 पट इतकी आहे.
1: करोडो छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर.
0: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जन कल्याणाची.
2: प्रवेशासह करिअरची सुवर्ण संधी. तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित तेरणा कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय धाराशिव इथे
3: 12वी पास ना BCA, 12वी सायन्स पास ना BSC कॉम्प्युटर सायन्स, BSC जनरल तसेच BCOM BA, MSC कॉम्प्युटर सायन्स, 11वी आर्ट व कॉमर्स शाखेत प्रवेश देणे सुरू.
2: विद्यापीठातील पहिले संगणक शास्त्र महाविद्यालय, ब्रॉडबँड इंटरनेट सह सुसज्ज 3 कॉम्प्युटर लॅब, VC द्वारे गेस्ट लेक्चर सुविधा, उच्च विद्याविभूषित प्राध्यापक वृंद,
3: शासनाच्या करिअर कट्टा उपक्रमाद्वारे मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सुविधा, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासन नियमानुसार शिष्यवृत्ती.
2: संपर्क प्राचार्य डॉक्टर DB मोरे सर, तेरणा महाविद्यालय, MIDC परिसर, धाराशिव. मोबाईल 94 22 92 96 78, 94 21 358 408 आणि 94 21 36 10 71.
3: आपली पसंत, आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून. टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4. रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाईट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.
2: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांचा असा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि पुढे आयुष्यामध्ये मार्गक्रमण करत असताना ते एका अशा उंचीवर जाऊन पोहोचलेले असतात की त्यांचा जो हा जीवन प्रवास असतो ते आपल्यासाठी एक इन्स्पिरेशन असतं, प्रेरणा असते. याच पद्धतीनं आपण अनेक विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास जाणून घेत असतो. आज तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमामध्ये आपण निमंत्रित केलेलं आहे माननीय श्री सूर्यकांत मोहंती यांना. ते भुवनेश्वर इथे सध्या आहेत, मूळतः ओडिसाचेच आहेत राहणारे, आणि सध्या भुवनेश्वर इथे मॅटेरियल्स नॅल्को जी गव्हर्नमेंटची कंपनी आहे त्या ठिकाणी जनरल मॅनेजर या खूप मोठ्या अशा पदावर आहेत. 1991 साली ते पासआउट झालेले आहेत. 1987 साली त्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेला होता. ते आज आपल्याशी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये बोलणार आहेत. सूर्यकांतजी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा के स्टुडियो.
4: थैंक यू
2: जी सर. जैसे मैंने अभी एक मिनट में आपका इंट्रोडक्शन करवा के दिया कि आप एक तो जनरल मैनेजर हो मेटेरियल्स नैल्को कंपनी में, साथ में आपने 1991 को पास आउट किया था. तो आप 87 के बाद पहली बार कॉलेज कैंपस में आ रहे हो?
4: 91 के बाद फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू कॉलेज.
2: यस
4: आई पास आउट इन 1991. आई हैड ट्राइड टू कम वंस बट आई कुडंट मेक इट, बट दिस टाइम आई हैव मेड इट दैट आफ्टर एलुमनी आई विल मूव एंड हैव अ लुक.
2: अच्छा, तो अभी लगभग 32 ईयर्स हो रहे.
4: यस,
2: तो आपको कैसे फील हो रहा है ये पहले बोलिए.
4: इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. सी, व्हेन वी लेफ्ट द कॉलेज, आई थिंक देयर वाज अ सिंगल बिल्डिंग, वन साइड दैट इज द मेन कैंपस, एंड टू साइड देयर आर टू हॉस्टल्स, ओल्ड हॉस्टल, न्यू हॉस्टल. नथिंग एल्स वाज विजिबल फ्रॉम द मेन रोड इटसेल्फ, बट नाउ फ्रॉम द मेन रोड इटसेल्फ डिफरेंट कैंपसेस आर बीइंग विजिबल. आई वुड हैव लाइक टू विजिट द हॉस्टल, बट सॉरी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मूव एंड चेक द हॉस्टल्स, बट आई हर्ड दैट द हॉस्टल्स आर न्यू हॉस्टल्स आर स्टिल द सेम एंड ओवरऑल इट लुक्स टोटली डिफरेंट.
2: अच्छा, आपका फर्स्ट डे कैसा था जब आप एडमिशन हुआ?
4: यस, व्हेन आई जॉइन द फर्स्ट डे आई वॉज इन सर्च ऑफ ए हॉस्टल एंड आई वॉज टोल्ड दैट देर इज नो हॉस्टल सीट अवेलेबल राइट नाउ, सो यू हैव टू एडजस्ट समवेयर 10-15 डेज. सो आई हैड टू गो टू सम सीनियर ओडिया पीपल, दे आर स्टेइंग टुगेदर इन अ प्राइवेट हॉस्टल, यू कैन से फ्लैट्स. सो I started staying with them. In accidentally, one bed was vacant in one of the room. So they told you, if you want, you can continue. And I became so close with these senior people that all along the first year I stayed with them. And one very funny thing is that because I was staying with my seniors, and when we used to go in the bus, the juniors, I mean my batchmates, they used to think that he is a senior. They used to give a lot of respect. And in that year, I was not ranked.
2: Okay.
4: So I made it a point that as I was not ranked, I will ensure that nobody else is being ranked in my next 2-3 years. So that was the great experience. My first day experience was a very beautiful one.
2: तर मित्रांनो, आता सूर्यकांतजी असं सांगत आहेत की ते 1987 साली ॲडमिशनला आले, त्यावेळेसचा काळ कसा होता हे सांगितलेलं आहे. 1991 पासआउट झाले आणि ते त्यांच्या सिनियर सोबत राहिलेले होते, त्यामुळे त्यांच्यावर त्या काळामध्ये जी रॅगिंग होती ती नाही झालेली आहे. इट्स अ ग्रेट थिंग सर की आपने उस टाइम ऐसे कुछ ॲडजस्ट किया. लेकिन 99 उस टाइम का जो एकेडमिक्स रहता था वो किस तरीके का रहता था?
4: 1991, इट्स नॉट 99, 1991, yes. Today I was discussing, I met Mr. Uday Maske, he is my mentor, I can say. It was a very nice lecture, it's not a lecture, you see the students as his younger brother. So the student lectures relationship was very beautiful. You can say they used to take a lot of care of the year. And like what is happening today, if anything the student is unable to understand, he Google Baba is there, he is going to Google. But those days all the teachers are Google Baba, so any doubt we have only opportunities to go to them or some seniors. And these lecturers are very serious about and the motivation behind it, as it was a new college and to establish the college, the first results of the college, first 3-4 year results college has to be a very good one to attract the students outside. And it has happened. The first year batches, the result was very good. There was a lot of people. And I will tell you one thing. After joining, first year somehow we have completed. We didn't know that what was the scope of job after going out of this college. In second year, some of our friends, they got failed or some of them had dropped seeing the college condition. And they used to tell, Mr. Mohanty, you leave the college because we have spoiled our 1 year. We don't like you to spoil your 4 years.
2: Okay.
4: I told my father I spent some amount, so let me continue here. And we had a fear that will not get job. This certificate will not give a job. Somehow we continued. When we are in final year, we heard that some of our senior batches has got very good jobs. So that encouraged us a lot. And fortunately, as I say, from our batch, from the previous batch and the next batches, the students are doing very good. And some of them are CEO in a lot of companies. And yesterday one of my friends has told, in California, there is a Osmanabad Engineering College Association. Some people are united together and they are saying it's College of Engineering Osmanabad Group. So this is the... And many of us, in our batch also, many of the students, they had gone to US, Singapore, Canada, Many are into the government companies. In fact, I joined NALCO after 5 years, after working in 5 years in a private company. When I joined NALCO, some of my friends...
2: Aapne kab ye join kiya
4: tha? I joined NALCO in 1996.
2: Okay.
4: Till 96, I was in private companies, Delhi and here and there. When I joined NALCO, I joined along with some students from IIT, some students from NIT, some students from different government engineering colleges. And initially, I was feeling how to explain that I'm from College of Engineering Osmanabad. But afterwards, today, with full EA, I'm saying that I have passed out from Engineering College of Engineering Osmanabad. Yeah. There is no difference whether you are passing out from IIT. Yes, it has some minor difference. But if your 4 years input is very good, if your concept is clear, job is not a constant whether you are passing from College of Engineering Osmanabad or Indian Institute of IIT. That's what I want to say. And today, fortunately, I have been promoted to in NALCO in different positions. I found that some of the NIT, IIT students, they are not getting promotion, whereas I got the promotion. So I don't think there is any difference. But and I have a lot of job satisfaction as far as this is concerned.
2: क्योंकि आपने तो वो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था उसको शायद रीड कर लिया कि मैं वही चाहता था कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ना या फिर आईआईटी में पढ़ना क्या डिफरेंस है.
4: इट्स नॉट मच डिफरेंस. द नेम दो इट हैज अ वैल्यू. इट व्हेन यू सेइंग समवेयर आई एम फ्रॉम आईआईटी, इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू आर गेटिंग गुड प्रपोजल फ्रॉम अरेज, यू आर गेटिंग कंपनीज आई, यस. बट व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओस्मानाबाद, देयर मेट बी सम डिफरेंस. बट वंस you start working and you start giving the output, desired output, there is no difference.
2: Okay.
4: Okay.
2: आपको आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग में ऐसा क्या बदलाव आ चुका है? जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी थी?
4: कंप्यूटर साइंस
2: थी। तो अब 1991 का कंप्यूटर साइंस एंड टुडेज कंप्यूटर साइंस,
4: आई विल टेल यू व्हेन वी वर रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस देयर वाज अ सिंगल ब्रांच दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
2: ओके,
4: and people are doing MCA, some people used to ask me what is the difference between MCA and computer science. I used to tell computer science is basically hardware oriented, is mass here, and MCA is basically software oriented. This is what we used to say. But subsequently, computer science branch has been divided into four branches. Okay. In some places, 5-6. Okay. Mm. One is called computer science and engineering. One is called IT. One is called system engineering.
2: Okay. AIDS.
4: Some are saying it computer science and communication. Okay. Okay. And now this biotech, computer science biotechnology has come. Okay. So what is happening? Where computer science is linked to electronics, they're making a separate branch. Mm-hmm. Where computer science is linked to the E&A instrumentation side, they're saying it a different branch. And that is another reason I'm finding for the last 2-3 years, when the IT companies are coming for campus, they are basically taking IT oriented. Yeah. So the engineering college is seeing that if I have computer science 500 seats, my 100 students are going to be placed in a good year.
2: Good.
4: So what they're doing, the electronics specialization, computer science and electronics, computer science and system engineering, computer science and communication. Likewise, they have disintegrated the electronics branch into three different, adding some values of computer science.
2: Okay.
4: So what was computer science engineering as one branch, single branch in the year 1991, today there are 5-6 different branches.
2: Okay.
4: In India at least, okay. Yes.
2: तो जैसे कि आपने एक जर्नी देखी हुई है P1 P2 कंप्यूटर से लेके आज के जनरेशन के कंप्यूटर तक, या हैंडसेट में जो स्मार्टफोन है वहां तक, दिस काइंड ऑफ सब कंप्यूटर साइंस।
4: आई ऐड वन मोर थिंग, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, वी हर्ड दैट कंप्यूटर्स हैव कम टू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानाबाद। कंप्यूटर्स हैव कम, वी हर्ड दैट, सो वी आस्क्ड आवर कंप्यूटर साइंस सर, आई थिंक मस्कट सर, वी टोल्ड कि सर वी वांट टू सी द कंप्यूटर्स, ओके वी विल अरेंज। And daily, 3 or 4 students were asked to go and see.
2: Okay.
4: So we are saying, when our number will come to see the computer. Okay. So when we passed out computer science first year, second year, first semester, we have not touched computer. Second semester onwards of second year, we started touching computer science, not working. Maybe third year, we started doing some programming.
2: Okay.
4: But today, when the students are going and entering the computer science branch, from day one, they are working the computers.
2: Okay.
4: So that P1, P2, what you are saying, we are seeing floppy disk.
2: Mm-hmm.
4: Before, and after floppy disk, we had seen, we started working with 2 GB hard disk.
2: Okay.
4: Okay. 360 MB hard disk.
2: Okay.
4: And today it is, you see, in GB, it's coming, TB,
2: yes,
4: is coming.
2: Yes. जैसे कि 87 से लेकर 91 तक की आपकी बैच थी, आपका एजुकेशन था, तो ड्यू टू द चेंज इन दिस टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर साइंस है कुछ भी है, तो आज के जनरेशन में आप ऐसा क्या देख रहे हो जो कि पढ़ने में शायद एडवांस हो गई है, कुछ बैकवर्ड को भी आ गई?
4: As far as computer science engineering is concerned, you will see that every year there is some update, some new updates are coming. Okay. Suppose somebody has got, now after working 2-3 years, he got an expertise in Sybase. He cannot take it for granted that now next 5-10 years at least he doesn't have to learn anything. No. The moment he is getting mastered in Sybase, a new database, a new language is coming out. Okay. So every time some new concept, new updates are coming, and the people in computer science, particularly in computer science, they have to keep themselves updated with the market requirement, with the change scenario, with the different languages, etc. So it's interesting. It's not that it's challenging. I will not say it's challenging. To some extent, it is challenging, but it is also interesting when you go for a new subject, because it gives you a new concept, and next 3-4 years you are working in a new field. So it is challenging at the same time, but it is quite interesting too.
2: अच्छा, ये opportunities grab करने के लिए आज के student ने ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनको आसान हो?
4: See, suppose somebody is doing computer science engineering, okay, and he has a subject called say, data science. He has a subject called say, Python, okay. Now he should not sit silently that mera college mein I have this Python and data science, I should be limited myself to this. There are, if he is getting a scope to learn something in cyber security, suppose he is getting a scope in work in some other concept, then he should keep doing that. What way it will help him? By the time he goes out of the college, other than the syllabus, see, computer science syllabus remains unchanged for years together.
2: Okay.
4: As far as the college, university are concerned. But the concept of the market, the requirement of the market gets changed every 3-4 years. So once he goes out of the college with this extra subject, he will have having the knowledge of different domains, he will be in a better position for a job, for a challenging year, it will help him.
2: Okay.
4: So I will suggest that they should always go for something extra other than what is happening in the college.
2: Achha. मित्रांनो, आपण जे चर्चा करत आहोत ते माननीय श्री सूर्यकांत मोहंती यांच्याशी. ते भुवनेश्वर इथे जनरल मॅनेजर आहेत मॅटेरियल्स नॅल्को या गव्हर्नमेंटच्या कंपनीमध्ये आणि 1991 बॅचचे पासआउट आहेत कम्प्युटर सायन्समधले. सूर्यकांत सरजी, जैसे की आप अभी नॅल्को मे काम करो लगभग लास्ट 27 इयर्स से, तो ये जर्नी कैसी है और आप जनरल मैनेजर के ये पद तक आप पहुंच चुके हो, तो इसके अंदर ऐसे जॉब मिलने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए
4: इन डिफरेंट पीएसयूज दे आर हैविंग डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स. सम पीएसयूज दे हैव देयर ओन रिटन एग्जाम फॉलोड बाय ओन इंटरव्यू एंड ग्रुप डिसीजन देन सिलेक्ट. बट देर आर सर्टन पीएसयू लाइक नाल्को, इंडियन ऑयल, आई थिंक ओएनजीसी इज ऑल्सो इन टू दैट. वॉट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वॉट जी गेट स्कोर. बिकॉज गेट इज वन सच ईयर, बिकॉज सी इफ यू आर हैविंग ए थीम एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, दैट विल अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट कमिंग टूगेदर. बट एज फार गेट इज कंसर्न, वेन अ स्टूडेंट हैज गॉट 80 इन गेट स्कोर, सो नाउ दैट स्कोर विल बी कंपेरेबल फॉर डिफरेंट पीएसयूज. So instead of taking adopting different procedures, ministry has defined advice for going for GATE score, and most of the PSUs are taking from GATE score, that is for freshers. But as far as the we call it parallel placement, like in the different grades, when a fresher is joining, he is called graduate engineer. But afterwards, those who are joining maybe assistant manager in the year, so depending on the experience NALCO absorbs, it comes in the NALCO website, also in the paper advertisement. Okay. So from that the career column people can get the
2: advertisement. Government sector mein aisa ho sakta hai. Acha. Jaise ki haath mein smartphone hai aajkal, to aapko kya lagta hai ki iska productive use ho ya destructive use ho, kya ho raha hai aur kaise karna chahiye?
4: See, as far as any electronic goods are there, whether it is TV, whether it is laptop, whether it is mobile, always both has a constructive, both has a destructive. See, if you have, when you don't have a TV, you don't have that waste lots of time seeing cricket match, seeing this, that, all those. Every time you, nowadays you opening the TV, you will find some movies or something. Yeah. At the same time, there are some very good channels which you are supposed to see, so people can see the TV as for constructive purposes. And also, yeah, exactly in the same manner, mobile. A mobile can make you, having a mobile can help you. It's a, you can say it's a knowledge box. Okay. Today, everything and anything, you can Google it out in mobile, any website, anything you can access in the mobile. So it's an advantage. Disadvantage is that what we are supposed to do in the desktop, what we are supposed to do in the laptop, now started doing it in the mobile. It has a lot of impact on the body. Your back problem will be there, your eyes problems are there, your other problems are getting started. So yes, I'll suggest that mobile can be used for a lot of year, but let us restrict that. Whatever you can, suppose something you want to see in the website, don't go for the, and if you have a desktop and laptop, better you use that. Yeah, that is my suggestion. So you can have it for a lot of constructive work. At the same time, destructive also, people are doing everything here, whether it is money transfer, whether it is mail checking, whether it is everything they're doing in the mobile. So that is giving a lot of impact. In the longer run, they will be suffering. Achha. So that has to be minimized.
2: तो आपने लगभग 32 साल की जर्नी देखी है, वैसे तो पढ़ाई के दौरान भी देखा जाए तो.
4: यस, आई मैंने ड्यूरिंग माय लास्ट 32 इयर्स, आई टेल यू, आई हैव अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एट माय होम. इन ऑफिस वी आर गिवन ऑप्शन फॉर गोइंग फॉर अ लैपटॉप और डेस्कटॉप. आई हैव गॉन फॉर अ डेस्कटॉप एंड आई एंश्योर दैट आई एम यूजिंग द डेस्कटॉप फॉर मैक्सिमम टाइम. वेर एवर यू आर गोइंग इन अ टूर और यू स्टार्ट यूजिंग द लैपटॉप, बिकॉज यू कैनॉट कैरी आउट द डेस्कटॉप मोबाइल प्रॉपर्टी और मोबाइल प्रॉपर्टी. सो लैपटॉप हैज टू हैज इट ओन यूज, डेस्कटॉप हैज डिफरेंट यूज एंड मोबाइल हैज डिफरेंट यूज.
2: सो दैट आप इसका इमोशन के ऊपर कितना आप इसको इम्पैक्ट देखते हो, क्योंकि मैं हमेशा पूछता हूँ, शायद आपके बैच के सहरवर्दी सर हो, इमरान सहरवर्दी, उनको भी पूछा हुआ था तो बोले कि इमोशनल बॉन्डिंग में बहुत सारा इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमको इसको मॉरल एक्टिविटी हमारे फैमिलीज और नियर बाय फ्रेंड्स को सिखाना चाहिए. और आप कैसे देखते हो?
4: आई विल गो बैक व्हाट इरफान हैज टोल्ड, इन फैक्ट इरफान फ्रॉम बिलोंग्स टू माय बैच, या ही बिलोंग्स टू माय बैच
2: मेबी.
4: सो व्हाट आई सी दैट मेनी टाइम्स आई एम सीइंग दैट देयर इज अ गेट टुगेदर, सेवन पीपल आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ दी सेवन पीपल आर बिजी विद देयर ओन मोबाइल.
2: ओके
4: and sitting there, some message he is sending, somebody, one of them is giving a post, the second person is giving a like comment sitting there itself. But what is happening due to this concept, the interrelationship, the what physical relationship is are getting disturbed.
2: Okay.
4: So this is not a good thing to be entertained. Okay. So but people are doing it.
2: Okay. इसके ऊपर काम करना चाहिए. तो सर मैं फिर से एक बार आपको 1991 के जर्नी में लेके जाना चाहूंगा. आप कैसे ब्राइट स्टूडेंट थे, सीरियस स्टूडेंट थे, कैसे थे?
4: Yeah, I'll add one thing. When I came to join Osman Engineering College, I came with a hope that the principal has told that if he is getting a push, I didn't get computer science, I got electrical engineering. The principal has told my father that if he is getting a position in the first 60, he will be shifted to computer science.
2: Okay.
4: So from day one, I had a, because if I would have not got computer science, I would have not continued here, I would have continued somewhere else. So my first year was to get a position within first 60. And fortunately, I got third position in first year.
2: Okay.
4: So I got computer science and that continued. Maybe in second year, today, Maskar sir introduced my his wife that he used to get first position. I corrected him, not first position. I used to take a position between 2, 3, 4. Yeah. And finally, also in that way, I left.
2: So you were quite serious with your friends?
4: Yeah, I was having a very good relationship.
2: पर्सनैलिटी से थोड़ा सा
4: आई वॉज हैविंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन एंड द लोकल गाइज. ओके. एंड बट फॉर दैट रीजन आई वेंट टू अटेंड द एल्युमिनी. फ्रॉम देयर आई हैड कम ओवर ओसमान टू सी. एंड दैट टाइम देर वॉज नो अदर थिंग एट ओसमानाबाद. सी इफ यू आर नॉट हैविंग ए गुड ग्रुप, यू कैनॉट स्पेंड टाइम एट ओसमानाबाद. सो यू हैव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप. एंड वी इन द लास्ट फोर ईयर, दोज फोर ईयर्स वी एंजॉयड व्हाट नॉट.
2: ओके.
4: And the bonding that we got today also, many when I have started posting my photos from college, there is a lot of phone calls that you take that photo, you take that photo, you try to meet him, you try to meet that, all those things. So this is what the students bonding with Osman Engineering College.
2: Okay. और जैसे कि उस time cultural activities होते होंगे तो आप उसमें

0: पार्टिसिपेट करते थे या फिल्में विल्में देखना ऐसा कुछ होता था?
1: फिल्में तो यहाँ हॉलफुल नहीं था, एक हॉल था आई थिंक ये, बट देर आर टू वीडियो हॉल्स.
0: Okay.
1: One is called Chapne, one is Balaji. Okay. Yes. So we were attached to that. Whatever movie we used to tell him, he used to put those. Yeah. Okay. And there was again some movie hall was there. And one day, Pankaj sir has told in our class that I had seen Phool Ek Phool Do Maali 16 times. Then I took a challenge, sir, I will see another movie 17 times and then I'll tell in the class. Okay. And there was a movie called Sajan. Okay. So I saw it 17 times and I told Pankaj sir, I crossed ear, have broken ear records. Okay. Which movie? I told Sajan. So the 17th time when I saw it here only in that hall. Okay. So that day. That was.
0: Our cultural activities?
1: Yeah, cultural activities. Though I don't used to participate, there are from our batches, there are singers like Prasanna Mahapatra, Jetli, Siddharth Jetli, and some local, Satish. There are a lot of people having such activities. And used to have good all together. But one thing that we missed and today we are missing it, that time we are not having mobile phone.
0: Okay.
1: I think very few have cameras.
0: Okay.
1: And we didn't have photos many. So today we have nothing to say, only what our memory we have. Otherwise we don't have a photo to say. Otherwise we have enjoyed a lot at Nosunas.
0: Okay. सर, और जैसे कि आप लगभग हम 20 मिनट से बात कर रहे हैं तो आप पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहे हो, शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में और एक क्यूरियोसिटी का ऐसा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर कितनी आती है करियर में लाइक इंग्लिश?
1: एज फार एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर कंसर्न, लैंग्वेज का इतना इम्पैक्ट नहीं है. ओके. सी, इन इंडिया नाउ गवर्नमेंट इज फोर्सिंग दैट यू शुड गो फॉर हिंदी.
0: ओके.
1: नथिंग रॉन्ग इन दैट. And the lecturers in our time also and today also, okay, while explaining something, they take the help of Hindi also. Even before joining NALCO, I was doing some as a faculty in some year. So there also, we tried to explain something in Hindi because here what is happening, many people are from different places, okay, all over India. So the North Indians can understand both Hindi and English, okay? Mm-hmm. But the South Indians, they don't, even if they understand Hindi, they will not like to come out. So most of the places, English is still the medium. But I don't remember, due to government pressure, now they're shifting to even in our company, we got a pressure that everything we have to sign in Hindi. So hum log maximum note sheet mein hum log at least kuch ho na ho, at least name, signature, designation ko Hindi mein dalte hain.
0: Okay.
1: And batches office mein we ensure that we are talking in Hindi.
0: Achha, okay.
1: But
0: ओके. तो सर, सूर्यकांत मोहंती सर जी जैसे कि आप 1991 में पास आउट हो गए, 1987 में एडमिशन लिया था, ड्यूरिंग द ईयर आप जब आ रहे थे आज कॉलेज में कैंपस में, तो कौन सा ऐसा गाना था जो आपके दिमाग में चल रहा था?
1: टुडे इनफैक्ट टुडे आई हैव पोस्टेड वन फोटो ऑफ माय एलुमनी वी हैड एट मैनुअल रिसेंटली एंड आई हैड सांगे सॉन्ग. मैं कविता लिखा था हिंदी में, वो कविता को पेश किया था.
0: आज भी आपको करनी
1: होगी. कविता को पेश किया था एंड वो कविता को अगेन मैं उसका एक फोटो में पोस्ट किया था
0: जी.
1: तो फोटो में एक ही गाना मुझे याद आया, जाने कहाँ गए हो दिन.
0: अच्छा.
1: इफ यू लाइक आई विल जस्ट रीड आउट द कविता.
0: या
1: स्मॉल एंड दैट कविता आई रोट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट.
0: Okay.
1: It was in the flight mode.
0: Okay.
1: So that time, I wrote this song. ए मेरे दोस्तों, ए मेरे उस्मानाबाद की फसादियों, ना जाने चार साल में क्या जादू सा कर डाला, ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया.
0: अच्छा.
1: ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया. कुछ मेरे प्रोफेसर लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे दोस्तों के बारे में मैं कुछ अच्छे बुरे बोलूँगा आज, आप लोगों की इजाज़त से मेरे दिल की बात पेश करूँगा. प्रोफेसर लोग बैठे थे उनके सामने, इन गाली गुलौज देना ठीक नहीं लगता. सो दैट वाज, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, जिन्हें ना मिला किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट, ना हम किसी रईस परिवार से थे कि पढ़ सकते थे कर्नाटक की नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में. मजबूर होके हम चले आए थे ओसनाथ की उस झोपड़ी कॉलेज में, मजबूर होके हम चले आए थे ओस्मानाबाद की उस झोपड़ी कॉलेज में. कैसे बताएं हम कितने गधे थे, कितने नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे. चार साल पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटे थे, हमेशा एक ही सवाल आता था हमारे दिल में, क्या इस सर्टिफिकेट से मिल सकता है नौकरी, ना

0: वही तो एक ही सोर्स था, कैसे भूले हम मस्के सर पंखे सर को, कैसे भूले हम पाटिल सर कुलकर्णी सर को, कैसे भूले हम घालके सर देवना सर को। जो कोच भी हूँ आज सर, आप लोगों की दुआओं से भी हूँ, आप ही तो है जिन्होंने जमीन के ऊपर हम ही लोगों को खड़ा कराया।
1: वाह,
0: क्षमा चाहूँगा यहाँ बैठे कुछ प्रोफेसर साहब के नाम नहीं ले पाए, कुछ लोग थे जिनका नाम याद नहीं था, कुछ नए प्रोफेसर लोग भी। कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे। बस यही कह के मेरा कविता खत्म करूंगा। आप लोगों का ऐसा प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, शुक्रिया अदा करूंगा उन्हीं दोस्तों का, उन्हीं प्रोफेसर लोगों का जिन्होंने कुछ दिनों से दिल लगा के मेहनत करके हम सबको आज एक साथ कर पाया। जो लोग नहीं आए उन्हें अनुरोध करूंगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल, नमस्कार।
1: क्या बात है सर, यानी आपने इस कविता के अंदर तो पूरी जर्नी ही बता दी।
0: या दिस मोस्टली कवरिंग में एंड इट्स ऑल रियल फैक्ट्स, दो देयर इज नो मसला नथिंग, ओके, इट्स ऑल इन फैक्ट दोज थ्री वर्ड्स, गधे नालायक एंड बेवकूफ।
1: बट वो तो कॉलेज के दिन थे सर, कॉलेज के दिनों में तो सबको ही ऐसे होते हैं।
0: ये जो तीन वर्ड है ये एक्चुअल वर्ड नहीं था मेरा, कुछ और वर्ड्स था जो सबके सामने बोलने पे मैं वहीं पे एडिट करके इसको डाला था कि यहाँ भी नहीं बोलूंगा उसको। एनीवे दैट वाज अ डिफरेंट ये एक्सपीरियंस ऑल्डो।
1: तो सूर्यकांत मोहंती जी, अब फाइनल गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या कहना चाहोगे जो कि सबके लिए हो?
0: आई विल से दैट टू थिंग्स आई टेल, कि ओस्मान इंजीनियरिंग कॉलेज इज अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, डूइंग गुड, हैविंग लॉट ऑफ वेरी गुड प्रोसेस। Only thing that they have to add on, let them invite some of the alumni doing very good in overseas as well as in India, in government sectors, in private sectors, as a consulting. There are two things. See, when a person is coming from, you ask him to come to from USA to Delhi, he'll come. But when you call somebody to come from USA to Osuna, the transit is making a lot of way. So let, see, as far as the government, as far as private engineering college is concerned, the best in Odisha or in other places I've seen, the maximum paid salary is to the, not to the principal, is to the person looking after the placement, called as placement officer. Okay. So what they're doing, they're trying to get the people from different locations who can motivate, who can find out some what, cream and take it. So here, if college management will take this as a seriously, calling the alumni students, okay, at least you make sure that you do something like they'll get what, a bonus sort of thing, ki hum log to aapke liye aana jana ka ye kar rahe hain, aap aiye. See, aana jana ka flight charge is not important to him, but he will feel that I am important, college wants my service. So he'll rush to the and he will not only give a class, he will try to find out some people whom he can observe in his company.
1: Yes.
0: That is what is missing, that is what is required for and that will attract many other people to come over here on their own.
1: Yes.
0: So I request the management to look into this aspect.
1: Yes. Okay. It's good suggestion sir. मैं भी मैनेजमेंट को ये इंटरव्यू के आपका जो सजेशन है वो टेक्स्ट मैसेज में, अभी के जो हमारे एमएलए है राणा जगजीत सिंह पाटिल, ट्रस्टी भी है, तो उनको मैं सेंड कर दूंगा कि ऐसे भी कुछ रिक्वायरमेंट है, शायद वो भी कुछ इसके अंदर कर सके। लेकिन श्री सूर्यकांत मोहंती जी, आपने इतने मतलब रश आवर्स में भी आपने कुछ वक्त निकाला और ये जो आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, ये बिल्कुल हम बोलते हैं कि इंस्पिरेशन है, ये जब इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपने जितना भी शेयर किया एक्सपीरियंस, उसके लिए मैं रेडियो तेना की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: थैंक यू।
1: आणि आपण ऐकत राहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोतेव रेडिओ तेना ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवरही रेडिओ तेना हे ॲप उपलब्ध आहे। आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेना ऐकू शकता किंवा http://radio.coe.usmanav.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेना। आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामला लाईक करा, फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा। त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500, 9970500900। ऐकत राहा आनंदी राहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: प्रवेशासह करिअरची सुवर्ण संधी, तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित तेरणा कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय धाराशिव इथे
0: 12वी पास ना BCA, 12वी सायन्स पास ना BSc कॉम्प्युटर सायन्स, BSc जनरल, तसेच BCOM BA, MSc कॉम्प्युटर सायन्स, 11वी आर्ट व कॉमर्स शाखेत प्रवेश देणे सुरू।
1: विद्यापीठातील पहिले संगणक शास्त्र महाविद्यालय, ब्रॉडबँड इंटरनेट सह सुसज्ज 3 कॉम्प्युटर लॅब, VC द्वारे गेस्ट लेक्चर सुविधा, उच्च विद्याविभूषित प्राध्यापक वृंद,
0: शासनाच्या करिअर कट्टा उपक्रमाद्वारे मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सुविधा, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासन नियमानुसार शिष्यवृत्ती।
1: संपर्क प्राचार्य डॉक्टर DB मोरे सर, तेरणा महाविद्यालय, MIDC परिसर, धाराशिव। मोबाईल 94 22 92 96 78, 94 21 358 408 आणि 94 21 36 10 71।
2: मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का की ज्या तीव्र सूर्यप्रकाशाला कधी काळी आपण केवळ असह्य उष्णता म्हणून पाहत होतो, त्याच उन्हाचा वापर आता आपल्या घराच्या छतावरून ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी केला जात आहे। यामुळेच आज देशातील सुमारे 37 लाख घरे प्रधानमंत्री सूर्य घर बनली आहे। यामुळे विजेच्या बिलांमध्ये कपात झाली आहे आणि संपूर्ण देशभरात एक नवा आत्मविश्वासही वाढला आहे।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पॉवर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांचा असा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि पुढे आयुष्यामध्ये मार्गक्रमण करत असताना ते एका अशा उंचीवर जाऊन पोहोचलेले असतात की त्यांचा जो हा जीवन प्रवास असतो ते आपल्यासाठी एक इन्स्पिरेशन असतं, प्रेरणा असते। याच पद्धतीनं आपण अनेक विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास जाणून घेत असतो। आज तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमामध्ये आपण निमंत्रित केलेलं आहे माननीय श्री सूर्यकांत मोहंती यांना। ते भुवनेश्वर इथे सध्या आहेत, मूळतः ओडिसाचेच आहेत राहणारे आणि सध्या भुवनेश्वर इथे मॅटेरियल्स नॅल्को जी गव्हर्नमेंटची कंपनी आहे त्या ठिकाणी जनरल मॅनेजर या खूप मोठ्या अशा पदावर आहेत। 1991 साली ते पासआउट झालेले आहेत। 1987 साली त्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेला होता। ते आज आपल्याशी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये बोलणार आहेत। सूर्यकांतजी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा के स्टुडियो।
4: थैंक यू
1: जी सर। जैसे मैंने अभी एक मिनट में आपका इंट्रोडक्शन करवा के दिया कि आप एक तो जनरल मैनेजर हो मैटेरियल्स नैल्को कंपनी में, साथ में आपने 1991 को पास आउट किया था।
4: येस।
1: तो आप 87 के बाद पहली बार कॉलेज कैंपस में आ रहे हो?
4: 91 के बाद फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू कॉलेज।
1: यस यस,
4: आई पास आउट इन 1991। आई हैड ट्राइड टू कम वंस बट आई कुडंट मेक इट, बट दिस टाइम आई हैव मेड इट दैट आफ्टर एलुमनी आई विल मूव एंड हैव अ लुक।
1: अच्छा, तो अभी लगभग 32 ईयर्स हो रहे।
4: यस।
1: तो आपको कैसे फील हो रहा है ये पहले बोलिए।
4: इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। सी, व्हेन वी लेफ्ट द कॉलेज, आई थिंक देयर वाज अ सिंगल बिल्डिंग वन साइड, दैट इज द मेन कैंपस, एंड टू साइड देयर आर टू हॉस्टल्स, ओल्ड हॉस्टल, न्यू हॉस्टल, नथिंग एल्स वाज विजिबल फ्रॉम द मेन रोड इटसेल्फ। बट नाउ फ्रॉम द मेन रोड इटसेल्फ डिफरेंट कैंपसेस आर बीइंग विजिबल। आई वुड हैव लाइक टू विजिट द हॉस्टल बट सॉरी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मूव एंड चेक द हॉस्टल्स, बट आई हर्ड दैट द हॉस्टल्स आर न्यू हॉस्टल्स आर स्टिल द सेम एंड ओवरऑल इट लुक्स टोटली डिफरेंट।
1: अच्छा, आपका फर्स्ट डे कैसा था जब आप एडमिशन को आए?
4: यस, व्हेन आई जॉइन द फर्स्ट डे आई वाज इन सर्च ऑफ ए हॉस्टल एंड आई वाज टोल्ड दैट देयर इज नो हॉस्टल सीट अवेलेबल राइट नाउ, सो यू हैव टू एडजस्ट समवेयर 10-15 डेज। सो आई हैड टू गो टू सम सीनियर ओडिया पीपल, दे आर स्टेइंग टुगेदर इन अ प्राइवेट हॉस्टल, यू कैन से फ्लैट्स। सो I started staying with them. In accidentally, one bed was vacant in one of the room. So they told you, if you want, you can continue. And I became so close with these senior people that all along the first year I stayed with them. And one very funny thing is that because I was staying with my seniors, and when we used to go in the bus, the juniors, I mean my batchmates, they used to think that he is a senior. They used to give a lot of respect. And in that year, I was not ranked. So I made it a point that as I was not ranked, I will ensure that nobody else is being ranked in my next 2-3 years. So that was a great experience. My first day experience was a very beautiful one.
1: तर मित्रांनो, आता सूर्यकांतजी असं सांगत आहेत की ते 1987 साली ॲडमिशनला आले, त्यावेळेसचा काळ कसा होता हे सांगितलेलं आहे. 1991 पासआउट झाले आणि ते त्यांच्या सिनियरसोबत राहिलेले होते, त्यामुळे त्यांच्यावर त्या काळामध्ये जी रॅगिंग होती ती नाही झालेली आहे. इट्स अ ग्रेट थिंग सर की आपने उस टाईम ऐसे कुछ ॲडजस्ट किया. लेकिन 99 उस टाइम का जो एकेडमिक्स रहता था वो किस तरीके का रहता?
4: 1991 इट्स नॉट 99 1991 यस. टुडे आई वाज डिस, आई मेट मिस्टर उदय मस्के, ही इज माय मेंटर. इट्स वेरी नाइस लेक्चर, इज नॉट अ लेक्चर, यू सी द स्टूडेंट्स एज हिज यंग ब्रदर. So their student lectures relationship was very beautiful. You can say they used to take a lot of care of the and like what is happening today, if anything the student is unable to understand, he Google Baba is there, he is going to Google. But those days all the teachers are Google Baba, so anything doubt we have only opportunities to only go to them or some seniors. And these lecturers are very serious about and the motivation behind it, as it was a new college, and to establish the college, the first results of the college, first 3-4 year results, college has to be a very good one to attract the students outside. And it has happened. The first year batches, the result was very good. There was a lot of people. And I will tell you one thing. After joining, first year somehow we have completed. We didn't know that what was the scope of job after going out of this college. In second year, some of our friends, they got failed, or some of them had dropped seeing the college condition. And they used to tell, Mr. Mohanty, you leave the college because we have spoiled our 1 year. We don't like you to spoil your 4 years.
1: Okay.
4: I told my father I spent some amount, so I'll let me continue here. And we had a fear that we'll not get job. This certificate will not give a job. Somehow, we continued. When we are in final year, we heard that some of our senior batches has got very good jobs. So that encouraged us a lot. And fortunately, as I say, from our batch, from the previous batch and the next batches, the students are doing very good. And some of them are CEO in a lot of companies. And yesterday, one of my friends has told, in California, there is a Osmanabad Engineering College Association. Some people are united together and they are saying it's College of Engineering Osmanabad Group. So this is the... And many of us, in our batch also, many of the students, they had gone to US, Singapore, Canada, Many are into the government companies. In fact, I joined NALCO after 5 years, after working in 5 years in a private company. When I joined NALCO, some of my friends...
1: Aapne kab ye join kiya
4: tha? I joined NALCO in 1996. Till 96, I was in private companies, Delhi and here and there. When I joined NALCO, I joined along with some students from IIT, some students from NIT, some students from different government engineering colleges. And initially, I was feeling, how to explain that I'm from College of Engineering Osmanabad. But afterwards, today, with full EA, I'm saying that I have passed out from Engineering College, College of Engineering Osmanabad. There is no difference whether you are passing out from IIT. Yes, it has some minor difference. But if your 4 years input is very good, if your concept is clear, job is not a constant whether you are passing from College of Engineering Osmanabad or Indian Institute of IIT. That's what I want to say. And today, fortunately, I have been promoted to in NALCO in different positions. I found that some of the NIT, IIT students, they are not getting promotion, whereas I got the promotion. So I don't think there is any difference. And I have a lot of job satisfaction as far as this is concerned.
1: क्योंकि आपने तो वो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था उसको शायद रीड कर लिया कि मैं वही चाहता था कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ना या फिर आईआईटी में पढ़ना क्या डिफरेंस है.
4: इट्स नॉट मच डिफरेंस. द नेम दो इट हैज अ वैल्यू. इट व्हेन यू आर सेइंग फ्रॉम आई एम फ्रॉम आईआईटी, इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू आर गेटिंग गुड प्रपोजल फ्रॉम आरएस, यू आर गेटिंग कंपनीज आर यस. बट व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओस्मानाबाद, देयर मेट बी सम डिफरेंस. बट वंस you start working and you start giving the output, desired output, there is no difference.
1: Okay.
4: Okay.
1: आपको आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग में ऐसा क्या बदलाव आ चुका है? जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी थी?
4: कंप्यूटर साइंस
1: थी। तो अब 1991 का कंप्यूटर साइंस एंड टुडेज कंप्यूटर साइंस,
4: आई विल टेल यू व्हेन वी वर रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस देयर वाज अ सिंगल ब्रांच दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
1: ओके,
4: and people are doing MCA, some people used to ask me what is the difference between MCA and computer science. I used to tell computer science is basically hardware oriented, is MCA, and MCA is basically software oriented. This is what we used to say. But subsequently, computer science branch has been divided into four branches. Okay. In some places, 5-6. Okay. Mm. One is called computer science and engineering, one is called IT, one is called system engineering.
1: Okay. AIDS.
4: Some are saying it computer science and communication. Okay. Okay. And now this biotech, computer science biotechny has come. Okay. So what is happening? Where computer science is linked to electronics, they're making a separate branch. Mm-hmm. Where computer science is linked to the E&A instrumentation side, they're saying it a different branch. And that is another reason I'm finding for the last 2-3 years, when the IT companies are coming for campus, they are basically taking IT oriented. Yeah. So the engineering college is seeing that if I have computer science 500 seats, my 100 students are going to be placed in a good year.
1: Good.
4: So what they're doing, the electronics specialization, computer science and electronics, computer science and system engineering, computer science and communication. Likewise, they have disintegrated the electronics branch into three different, adding some values of computer science.
1: Okay.
4: So what was computer science engineering as one branch, single branch in the year 1991, today there are 5-6 different branches.
1: Okay.
4: In India at least, okay. Yes.
1: तो जैसे कि आपने एक जर्नी देखी हुई है P1 P2 कंप्यूटर से लेके आज के जनरेशन के कंप्यूटर तक, या हैंडसेट में जो स्मार्टफोन है वहां तक, दिस काइंड ऑफ सब कंप्यूटर साइंस।
4: आई ऐड वन मोर थिंग, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, वी हर्ड दैट कंप्यूटर्स हैव कम टू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानाबाद। कंप्यूटर्स हैव कम, वी हर्ड दैट, सो वी आस्क्ड द कंप्यूटर साइंस सर, आई थिंक मस्कर सर, वी टोल्ड कि सर वी वांट टू सी द कंप्यूटर्स, ओके वी विल अरेंज। And Delhi, 3 or 4 students were asked to go and see.
1: Okay.
4: So we are saying when our number will come to see the computer. Okay. So when we passed out computer science first year, second year, first semester, we have not touched computer. Second semester onwards of second year, we started touching computer science, not working. Maybe third year, we started doing some programming.
1: Okay.
4: But today, when the students are going entering the computer science branch, from day one, they are working the computers.
1: Okay.
4: So that P1, P2, what you are saying, we are seeing floppy disk.
1: Mm-hmm.
4: Before, and after floppy disk, we had seen, we started working with 2 GB hard disk.
1: Okay.
4: Okay. 360 MB hard disk.
1: Okay.
4: And today it is, you see, in GB, it's coming, TB.
1: Yes. जैसे कि 87 से लेकर 91 तक की आपकी बैच थी, आपका एजुकेशन था, तो ड्यू टू द चेंज इन दिस टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर साइंस है कुछ भी है, तो आज के जनरेशन में आप ऐसा क्या देख रहे हो जो कि पढ़ने में शायद एडवांस हो गई है, कुछ बैकवर्ड को भी आ गई?
4: As far as computer science engineering is concerned, you will see that every year there is some update, some new updates are coming. Okay. Suppose somebody has got, now after working 2-3 years, he got an expertise in Sybase. He cannot take it for granted that now next 5-10 years at least he doesn't have to learn anything. No. The moment he is getting mastered in Sybase, a new database, a new language is coming out. Okay. So every time some new concept, new updates are coming, and the people in computer science, particularly in computer science, they have to keep themselves updated with the market requirement, with the change scenario, with the different languages, etc. So it's interesting. It's not that it's challenging. I will not say it's challenging. To some extent, it's challenging, but it is also interesting. When you go for a new subject, because it gives you a new concept, and next 3-4 years working in a new field. So it is challenging at the same time, but it is quite interesting too.
1: अच्छा, ये opportunities grab करने के लिए आज के student ने ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनको आसान हो?
4: See, suppose somebody is doing computer science engineering, okay, and he has a subject called say, data science. He has a subject called say, Python, okay. Now he should not sit silently that mera college mein I have this Python and data science, I should be limited myself to this. There are, if he is getting a scope to learn something in cyber security, suppose he is getting a scope in work in some other concept, then he should keep doing that. What way it will help him? By the time he goes out of the college, other than the syllabus, see, computer science syllabus remains unchanged for years together.
1: Okay.
4: As far as the college, university are concerned. But the concept of the market, the requirement of the market gets changed every 3-4 years. So once he goes out of the college with this extra subject, he will have having the knowledge of different domains, he will be in a better position for a job forest challenging year, it will help him.
1: Okay.
4: So I will suggest that they should always go for something extra other than what is happening in the college.
1: मित्रांनो, आपण जे चर्चा करत आहोत ते माननीय श्री सूर्यकांत मोहंती यांच्याशी. ते भुवनेश्वर इथे जनरल मॅनेजर आहेत मॅटेरियल्स नेल्को या गव्हर्नमेंटच्या कंपनीमध्ये आणि 1991 बॅचचे पासआउट आहेत कम्प्युटर सायन्समधले. सूर्यकांत सर जी, जैसे की आप अभी नेल्को में काम करो लगभग लास्ट 27 इयर्स से, तो ये जर्नी कैसी है और आप जनरल मैनेजर के ये पद तक आप पहुंच चुके हो, तो इसके अंदर ऐसे जॉब मिलने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए
4: इन पीएसयू, इन डिफरेंट पीएसयूज दे आर हैविंग डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स. सम पीएसयूज दे हैव देयर ओन रिटन एग्जाम फॉलोड बाय ओन इंटरव्यू एंड ग्रुप डिसीजन देन सिलेक्ट. बट देर आर सर्टन पीएसयू लाइक नेल्को, इंडियन ऑयल, आई थिंक ओएनजीसी इज ऑल्सो इन टू दैट. वॉट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वॉट जीट गेट स्कोर. बिकॉज GATE is one such year, because see, if you are having a theme exam, different exam for different colleges, that will attract different type of student coming together. But as far as GATE is concerned, when a student has got 80 in GATE score, so now that score will be comparable for different PSUs. So instead of taking adopting different procedures, ministry has defined an advice for going for GATE score, and most of the PSUs are taking from GATE score. That is for freshers. But as far as the we call it parallel placement, like in the different grades, when a fresher is joining, he is called graduate engineer. But afterwards, those who are joining maybe Aston Manja in the year, so depending on the experience NALCO absorbs, it comes in the NALCO website, also in the paper advertisement. Okay. So from that, the career column, people can get the
1: sector mein aisa ho sakta hai. Achha. Jaise ki haath mein smartphone hai aajkal, तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रोडक्टिव यूज हो या डिस्ट्रक्टिव यूज हो, क्या हो रहा है और कैसे करना चाहिए?
4: सी, एज फार एज एनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर देयर, वेदर इट इज टीवी, वेदर इट इज लैपटॉप, वेदर इट इज मोबाइल, ऑलवेज बोथ हैज अ कंस्ट्रक्टिव, बोथ हैज अ डिस्ट्रक्टिव. सी, इफ यू हैव, व्हेन यू डोंट हैव अ टीवी, you don't have that waste lots of time seeing cricket match, seeing this, that, all those. Every time you, nowadays you opening the TV, you will find some movies or some at the same time, there are some very good channels which you are supposed to see, so people can see the TV as for constructive purposes. And also exactly in the same manner, a mobile can make you, having a mobile can help you. It's a, you can say it's a knowledge box. Okay, today everything and anything, you can Google it out in mobile, any website, anything you can access in the mobile. So it's advantage. Disadvantage is that what we are supposed to do in the desktop, what we are supposed to do in the laptop, now started doing it in the mobile. It has a lot of impact on the body. Your back problem will be there, your eyes problems are there, your other problems are getting started. So yes, I'll suggest that mobile can be used for a lot of year, but let us restrict that. Whatever you can, suppose something you want to see in the website, don't go for the, and if you have a desktop and laptop, better you use that. Yeah, that is my suggestion. So you can have it for a lot of constructive work. At the same time, distributed also, people are doing everything, whether it is money transfer, whether it is mail checking, whether it is everything they're doing in the mobile. So that is giving a lot of impact. In the longer run, they will be suffering. Achha. So that has to be minimized.
1: तो आपने लगभग 32 साल की जर्नी देखी है, वैसे तो पढ़ाई के दौरान भी देखा जाए तो.
4: यस, आई मैंने ड्यूरिंग माय लास्ट 32 इयर्स, आई टेल यू, आई हैव अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एट माय होम. इन ऑफिस वी आर गिवन ऑप्शन फॉर गोइंग फॉर अ लैपटॉप और डेस्कटॉप. आई हैव गॉन फॉर अ डेस्कटॉप एंड आई एंश्योर दैट आई एम यूजिंग द डेस्कटॉप फॉर मैक्सिमम टाइम. वेर एवर यू आर गोइंग इन अ टूर और यू स्टार्ट यूजिंग द लैपटॉप, बिकॉज यू कैनॉट कैरी आउट द डेस्कटॉप मोबाइल प्रायोरिटी और मोबाइल प्रायोरिटी. सो लैपटॉप हैज टू हैज इट ओन यूज, डेस्कटॉप हैज डिफरेंट यूज एंड मोबाइल हैज डिफरेंट यूज.
1: सो दैट इज. आप इसका इमोशन के ऊपर कितना आप इसको इम्पैक्ट देखते हो, क्योंकि मैं हमेशा पूछता हूँ, शायद आपके बैच के सहरवर्दी सर हो, इमरान सहरवर्दी, उनको भी पूछा हुआ था तो बोले कि इमोशनल बॉन्डिंग में बहुत सारा इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमको इसको मॉरल एक्टिविटी हमारे फैमिलीज और नियर बाय फ्रेंड्स को सिखाना चाहिए. और आप कैसे देखते हो?
4: आई विल गो बैक व्हाट इरफान हैज टोल्ड, इन फैक्ट इरफान फ्रॉम बिलोंग्स टू माय बैच. या, ही बिलोंग्स टू माय बैच,
1: मे बी.
4: सो व्हाट आई सी दैट मेनी टाइम्स आई एम सीइंग दैट देयर इज अ गेट टुगेदर, सेवन पीपल आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ दी सेवन पीपल आर बिजी विद देयर ओन मोबाइल.
1: ओके
4: ओके. And sitting there, some message he is sending, somebody, one of them is giving a post, the second person is giving a like comment sitting there itself. But what is happening due to this concept, the interrelationship, the what physical relationship is getting disturbed.
1: Okay.
4: So this is not a good thing to be entertained. Okay. So but people are doing it.
1: Okay. इसके ऊपर काम करना चाहिए. तो सर मैं फिर से एक बार आपको 1991 के जर्नी में लेके जाना चाहूंगा. आप कैसे ब्राइट स्टूडेंट थे, सीरियस स्टूडेंट थे, कैसे थे?
4: Yeah, I'll add one thing. When I came to join Osman Engineering College, I came with a hope that the principal has told that if he is getting a push, I didn't get computer science, I got electrical engineering. The principal has told my father that if he is getting a position in the first 60, he will be shifted to computer science.
1: Okay.
4: So from day one, I had a, because if I would have not got computer science, I would have not continued here, I would have continued somewhere else. So my first year was to get a position within first 60. And fortunately, I got third position in first year.
1: Okay.
4: So I got computer science and that continued. Maybe in second year, today, Maskar sir introduced my his wife that he used to get first position. I corrected him, not first position. I used to take a position between 2, 3, 4. Yeah. And finally, also in that way, I left.
1: So you were quite serious with your friends?
4: Yeah, I was in a very, I was having a very good relationship.
1: पर्सनैलिटी से थोड़ा मैं थोड़ा सा
4: आई वॉज हैविंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन एंड द लोकल गाइज
1: ओके
4: एंड बट फॉर दैट रीजन आई वेंट टू अटेंड द एल्युमिनी फ्रॉम देयर आई हैड कम ओवर ओसमान टू सी एंड दैट टाइम देयर वाज नो अदर थिंग एट ओसमान सी इफ यू आर नॉट हैविंग ए गुड ग्रुप यू कैन नॉट spend time at Osmanabad. So you have to have a good relationship and we in the last 4 years, those 4 years we enjoyed what not.
1: Okay. Okay.
4: And the bonding that we got today also many when I started posting my photos from college, there is a lot of phone calls that you take that photo, you take that photo, you try to meet him, you try to meet that, all those things. So this is what the students bonding with Osmanabad Engineering College.
1: और जैसे कि उस टाइम कल्चरल एक्टिविटीज होते होंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे या फिल्में देखना ऐसा कुछ होता था?
4: फिल्में तो यहाँ हॉल फॉल नहीं था, एक हॉल था आई थिंक, बट देर आर टू

0: videos.
1: Okay.
0: One is called Chapne, one is Balaji. Okay.
1: Yes.
0: So we were attached to that. Whatever movie we used to tell him, he used to put those. Yeah.
1: Okay.
0: And there was again some movie hall was there. And one day, Pankaj sir has told in our class that I had seen Phool Ek Phool Do Maali 16 times.
1: Okay.
0: Then I took a challenge, ki, sir, I will see another movie 17 times and then I'll tell in the class.
1: Okay.
0: And there was a movie called Sajan. Okay.
1: Okay.
0: So I saw it 17 times and I told Pankaj sir, I crossed your broken ear records.
1: Okay.
0: Which movie? I told Sajan. So the 17th time when I saw it here only in that hall. Okay. So that day. That was.
1: Our cultural activities?
0: Yeah, cultural activities. Though I don't used to participate, there are from our batches, there are singers like Prasanna Mahapatra, Jetli, Siddhar Jetli, and some local, Satish. There are a lot of people having such activities, and used to have good altogether. But one thing that we missed, and today we are missing it, that time we are not having mobile phone.
1: Okay.
0: I think very few have cameras.
1: Okay.
0: And we didn't have photos many. So today we have nothing to say, only what our memory we have. Otherwise,
1: you know,
0: we don't have a photo to say. Otherwise, we have enjoyed a lot at Nosana.
1: Okay. सर, और जैसे कि आप लगभग हम 20 मिनट से बात कर रहे हैं, तो आप पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहे हो, शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में और एक क्यूरियोसिटी का ऐसा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर कितनी आती है करियर में, लाइक इंग्लिश?
0: सर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कंसर्न, लैंग्वेज का इतना इम्पैक्ट नहीं है. ओके. सी, इन इंडिया नाउ गवर्नमेंट इज फोर्सिंग दैट यू शुड गो फॉर हिंदी.
1: ओके.
0: नथिंग रॉन्ग इन दैट. And the lecturers in our time also and today also, okay, while explaining something, they take the help of Hindi also. Even before joining NALCO, I was doing some as a faculty in some year. So there also, we try to explain something in Hindi, because here what is happening, many people are from different places, okay, all over India. So the North Indians can understand both Hindi English, okay. But the South Indians, they don't, even if they understand Hindi, they will not like to commit and come out. So most of the places English is still the medium, but I don't know, due to government pressure now, they are shifting to, even in our company, we have got a pressure that everything we have to sign in Hindi. So hum log maximum note sheet mein hum log at least kuch ho na ho, at least name, signature, designation ko Hindi mein dalte hain.
1: Okay.
0: And batches office mein we ensure that we are talking in Hindi.
1: Achha, okay.
0: बट
1: ओके ओके. तो सर, सूर्यकांत मोहंती सर जी, जैसे कि आप 1991 में पास आउट हो गए, 1987 में एडमिशन लिया था, ड्यूरिंग द ईयर आप जब आ रहे थे आज कॉलेज में, कैंपस में, तो कौन सा ऐसा गाना था जो आपके दिमाग में चल रहा था?
0: टुडे, इनफैक्ट टुडे आई हैव पोस्टेड वन फोटो ऑफ माय एलुमिनी वी हैड एट पनवेल रिसेंटली, एंड आई हैड सांग ए सॉन्ग, मैं कविता लिखा था हिंदी में, वो कविता को पेश किया था.
1: आज भी आपको करनी
0: होगी. कविता को पेश किया था, एंड वो कविता को अगेन मैं उसका एक फोटो में पोस्ट किया था
1: जी.
0: तो फोटो में एक ही गाना मुझे याद आया, जाने कहाँ गए हो दिन.
1: अच्छा.
0: इफ यू लाइक आई विल जस्ट रीड आउट द कविता.
1: या,
0: स्मॉल, एंड दैट कविता आई रोट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट.
1: Okay.
0: It was in the flight mode.
1: Okay.
0: So that time, I wrote this song. ए मेरे दोस्तों, ए मेरे उस्मानाबाद की फसादियों, ना जाने चार साल में क्या जादू सा कर डाला, ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया.
1: अच्छा.
0: ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया. कुछ मेरे प्रोफेसर लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे दोस्तों के बारे में मैं कुछ अच्छे बुरे बोलूँगा आज, आप लोगों की इजाज़त से मेरे दिल की बात पेश करूँगा. प्रोफेसर लोग बैठे थे, उनके सामने गाली गुलौज देना ठीक नहीं लगता. सो दैट वाज, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, जिन्हें ना मिला किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट, ना हम किसी रहीस परिवार से थे कि पढ़ सकते थे कर्नाटक की नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में. मजबूर होके हम चले आए थे ओसनाथ की उस झोपड़ी कॉलेज में, मजबूर होके हम चले आए थे ओस्मानाबाद की उस झोपड़ी कॉलेज में. कैसे बताएं हम कितने गधे थे, कितने नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे. चार साल पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटे थे, हमेशा एक ही सवाल आता था हमारे दिल में, क्या इस सर्टिफिकेट से मिल सकता है नौकरी, ना इसी को दिखा के कर सकते कुछ कमाई. फिर हम यह कह के दिल को तसल्ली दिया, चार साल में कुछ पाया या नहीं, बस एक ही चीज को लेके मैं उस्मानाबाद से निकला, वो था देश की छोटे बड़े शहरों की कुछ हमसे भी बड़े बदमाशों की दोस्ती। गर्व है मुझे आज भी उन्हीं लोगों का दोस्ती पर, इसीलिए चला आया भुवनेश्वर से मिलने आपसे, इसीलिए चला आया 1600 किलोमीटर दूर से मिलने आपसे। कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे। कैसे भूलूं मैं उस जनीर होटल की पूरी भाजी, सुबह शाम भूख लगते ही पहुंच जाते थे। कैसे भूलूं मैं बालाजी चपने की बड़ी स्क्रीन की रंगीन सिनेमा, हमारे एंटरटेनमेंट की वही तो एक ही सोर्स था। कैसे भूले हम मस्के सर पंखे सर को, कैसे भूले हम पाटिल सर कुलकर्णी सर को, कैसे भूले हम घालके सर देवना सर को। जो कोच भी हूँ आज सर, आप लोगों की दुआओं से भी हूँ, आप ही तो है जिन्होंने जमीन के ऊपर हम ही लोगों को खड़ा कराया। क्षमा चाहूँगा यहाँ बैठे कुछ प्रोफेसर साहब के नाम नहीं ले पाए, कुछ लोग थे जिनका नाम याद नहीं था, कुछ नए प्रोफेसर लोग भी। कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे। बस यही कह के मेरा कविता खत्म करूँगा। आप लोगों का ऐसा प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, शुक्रिया अदा करूँगा उन्हीं दोस्तों का, उन्हीं प्रोफेसर लोगों का जिन्होंने कुछ दिनों से दिल लगा के मेहनत करके हम सबको आज एक साथ कर पाया। जो लोग नहीं आ पाए उन्हें अनुरोध करूंगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल, नमस्कार।
1: क्या बात है सर, यानी आपने इस कविता के अंदर तो पूरी जर्नी ही बता दी।
0: दिस मोस्टली कवरिंग में एंड इट्स ऑल रियल फैक्ट्स, दो देयर इज नो मसला नथिंग, ओके, इट्स ऑल इन फैक्ट दोस थ्री वर्ड्स, गधे नालायक एंड बेवकूफ।
1: बट वो तो कॉलेज के दिन थे सर, कॉलेज के दिनों में तो सबको ही ऐसे होते।
0: ये जो तीन वर्ड है ये एक्चुअल वर्ड नहीं था मेरा, कुछ और वर्ड्स था जो सबके सामने बोलने पे मैं वहीं पे एडिट करके इसको डाला था कि यहाँ भी नहीं बोलूंगा उसको। एनीवे दैट वाज अ डिफरेंट ये एक्सपीरियंस ऑल्डो।
1: तो सूर्यकांत मोहंती जी, आप फाइनल गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या कहना चाहोगे जो कि सबके लिए हो?
0: आई विल से दैट टू थिंग्स आई टेल, कि ओस्मान इंजीनियरिंग कॉलेज इज अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, डूइंग गुड, हैविंग लॉट ऑफ वेरी गुड प्रोसेस। Only thing that they have to add on, let them invite some of the alumni doing very good in overseas as well as in India, in government sectors, in private sectors, as a consulting. There are two things. See, when a person is coming from, you ask him to come to from USA to Delhi, he will come. But when you call somebody to come from USA to Osmanabad, the transit is making a lot of way. So let, see, as far as the government, as far as private engineering college is concerned, the best in Odisha or in other places I've seen, the maximum paid salary is to the, not to the principal, is to the person looking after the placement, called as placement officer. Okay. So what they're doing, they're trying to get the people from different locations who can motivate, who can find out some what, cream and ticket. So here, if college management will take this as a seriously, calling the alumni students, okay, at least you make sure that you do something like they'll get what, a bonus sort of thing, ki hum log to aapke liye aana jana ka ye kar rahe hain, aap aiye. See, aana jana ka flight charge is not important to him, but he will feel that I am important, college wants my service. So he'll rush to the and he will not only give a class, he will try to find out some people whom he can observe in his company. That is what is missing, that is what is required for and that will attract many other people to come over here on their own. So I request the management to look into this aspect.
1: इट्स गुड सजेशन सर, मैं भी मैनेजमेंट को ये इंटरव्यू के आपका जो सजेशन है वो टेक्स्ट मैसेज में अभी के जो हमारे एमएलए है राणा जगजीत सिंह पाटिल, ट्रस्टी भी है, तो उनको मैं सेंड कर दूंगा कि ऐसे भी कुछ रिक्वायरमेंट है, शायद वो भी कुछ इसके अंदर कर सके। लेकिन श्री सूर्यकांत मोहंती जी, आपने इतने मतलब रश आवर्स में भी आपने कुछ वक्त निकाला और ये जो आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, ये बिल्कुल हम बोलते कि इंस्पिरेशन है, ये जब इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपने जितना भी शेयर किया एक्सपीरियंस, उसके लिए मैं रेडियो तेरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: थैंक यू।
1: आणि आपण ऐकत राहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. श्रोतेव रेडिओ तेरणा ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवरही रेडिओ तेरणा हे ॲप उपलब्ध आहे. आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेरणा ऐकू शकता किंवा http://radio.coe.usmanav.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेरणा. आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामला लाईक करा, फॉलो करा. तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा. त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970-5900, 9970-5900. ऐकत राहा, आनंदी राहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.

दीवाना, जल जाऊं बनके क्षमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना। हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हम

सागर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो।

0: छी छी छी, मुझे तो देख के शर्म आ रही।
1: ओ, वहां जाते शर्म नहीं आती?
0: वहां की और बात है, वो घर की औरतें नहीं, उनका तो काम ही यही है मर्द को रिझाना।
1: ओ, और घर की औरत का ये काम नहीं अपने मर्द को रिझाना? जो नहीं रिझाती वो मर्द खो बैठती है।
0: ये भी कोई बात है? छी छी
1: छी, तुम पर, तुम्हारे बूढ़े ख्यालों पर।
0: बूढ़े ख्याल? कौन कहता मेरे ख्याल बूढ़े हैं?
1: मैं कहती हूँ तुम्हारी बीवी, स्क्वाड्रन लीडर सुंदर, तुम्हारे ख्याल भी बूढ़े हैं, तुम बुढ़े हो।
0: मैं बुढ़ा?
1: हाँ।